वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया, उनको हमसे प्यार है।

Radio NRN 99.1 समय को ख्याल राखौं 7 बज्यो नेपाली रेडियो नेटवर्क रेडियो एनआरएन 99.1 मा यो हो साँझ पख

0: see 他。
1: निकट माता दी बहिनी, विकट माता दी बहिनी, यहोर रेडियो दीदी बहिनी 95 थोप

0: रेडियो रेडियो दीदी बहिनी को समय सूचक हो।
1: अहिले बिहानको ठीक पाँच बज्यो।